0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: अल्लाह
1: अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

अरे प्याज का सांबर खिला के मुझे डोसे वाली ने दिल ले लिया। अपन कौन

का रसम पिला के मुझे एक मेवाली ने दिल ले लिया। अरे प्यार का सांबर खिला के मुझे दोसे वाली

हंसी तूने सुना होगा हंसी जो वो हंसी ऊपर ऊपर गरम अंदर अंदर नरम पीछा करेंगे हम तेरा जन्म जन्म हमसे तुझे छीने कोई किसी ने ये दम नहीं हमने कसम ली है यहाँ तू नहीं तो हम नहीं।

बड़ी मेहरबानी, बम्बैया राजा मदरासन रानी, तेरे मेरे आगे दुनिया भरे पानी, बम्बैया।

0: किया, बम्बई ने बड़ा किया, बम्बई ने खाना दिया, बम्बई ने पीना दिया, फिर भी दिल निकला हर जाए। अरे प्यार का सांभर खिला के मुझे, प्यार का सांभर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। अरे प्यार का सांभर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। अपन कौन
1: तंत्रज्ञानाच्या युगात कम्प्युटरचं उत्तम ज्ञान मिळवायचंय, तर मग MSCIT शिका आणि AI आणि इंटेलिजंट टेक्नॉलॉजी सह प्रॅक्टिकल आणि डिजिटल स्किल शिकण्याची सुवर्ण संधी मिळवा। त्यासाठी जरूर संपर्क साधा एज्युकेअर कम्प्युटर्स, प्रभू अपार्टमेंट, दुर्गा कॅफे जवळ, KBT सर्कल, गंगापूर रोड, नाशिक। संपर्क 9850 84 0520 आणि 9839 52 278।
2: ऐकूया बेटा ह्या चित्रपटामधलं देव कोहली यांचं गीत। स्वर आहे विपिन सचदेव आणि अनुराधा पौडवाल यांचं, संगीतकार आनंद मिलिंद।

उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम गुजर रही थी और आने वाले की कोई आहट नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

0: फसाना।
1: नाशिक मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विभागात शिक्षणाची सुवर्ण संधी। विद्यापीठाचं नाशिक उपकेंद्र घेऊन आलंय MBA आणि BBA कोर्सेस। इंडस्ट्री सेंट्रिक लर्निंग घडवेल तुमचं फ्युचर। ऍडमिशन ओपन फॉर MBA अँड BBA। अधिक माहितीसाठी संपर्क SPPU सब सेंटर नाशिक 0253-2-39-21-21।
2: काम करो, इन कपड़ों को उतार दो। मेरा मतलब है इन कपड़ों को उतार कर मॉडर्न ड्रेसेस पहनो और फिर देखना तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो शहर की लड़कियां कुछ भी नहीं। अगर तुम हीरो तो वो कंकर है कंकर।

0: यार दीदी, यावेळेस मला तुझ्या वहिनीला खूप स्पेशल गिफ्ट द्यायचंय.
1: अरे मग दे ना, एवढा का विचार करतोयस?
0: पण काय द्यायचं तेच समजत नाहीये ना.
1: अरे रेडिओ विश्वास आहे ना.
0: म्हणजे
1: आता बर्थडे असो किंवा अनिव्हर्सरी, आपल्या प्रियजनांना आपण रेडिओ विश्वास वरन शुभेच्छा देऊ शकतो.
0: ते कसं काय?
1: फक्त 500 रुपयांमध्ये आपण या शुभेच्छा देऊ शकतो. तर लगेचच कॉल कर 8380016512 किंवा 8380016500 या नंबरवर.
0: हो लगेचच कॉल करतो.
2: ये झूमर का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, जानबूझकर हम पर गिराया गया था.
3: जानबूझकर गिराया गया था? मगर क्यों?
2: हमारी जान लेने के लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन को मालूम हो गया है कि तुम मैडम बिलबिलान नहीं हो और मैं पापा खान नहीं हूँ.
3: मगर ये सब कैसे मालूम हो?
2: यही तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे मालूम हुआ. इस राज को तो सिर्फ करमवीर जी और माँ ही जानते हैं. खैर तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है.
3: मेरी फिक्र?
2: हाँ.
3: क्यों?
2: अगर तुम्हें कुछ हो गया तो?
3: तो क्या?
2: तो मेरा क्या होगा?

उसके सर पे चांद दिखेगा यानी होगा टकला। बच्चा जैसा भोला होगा तेरा दिल भर जानी, थोड़ी उसकी नाक बहेगी थोड़ा मुख से पानी। एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे, एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे।